0: जमुना का बोल राधा
1: जंगल को जिंदगी सत्याप आहत पुकुल 5:15 menit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM jangan lupa nah.